0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निमू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथी T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक इन स्काई, व्हाट्सएप इन लाइफ, मान मोड़ काम, इतनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फन डे, रेनबो फन डे,
2: रेनबो फन डे, रेनबो फन डे,
1: म्यूजिकल साथ, रियल लाइफ बात, सिनेमा नाटक, भटकन भी खास, स्टार्ट अप योर डे विथ रेनबो फन डे, रेनबो फन डे।
3: नमस्कार, सुप्रभात। 107.1 MHz वर तुम्ही ऐकत आहात मुंबई आकाशवाणी केंद्राची FM।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित ही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट, विनियमन और

0: आवास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
1: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
2: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
1: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
3: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ, वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
1: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
4: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
0: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
6: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत कारीगर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
2: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to launch 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today. Union Cabinet approves productivity link bonus of 78 days for over 11 lakh railway employees. Government forms committee to examine issues raised by sugarcane farmers and recommend appropriate measures. IMD forecasts heavy rain in Haryana, Punjab, Delhi, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. And in men's cricket, West Indies beat India by 24 runs in the 4th T20 match to level series 2-2. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate and dedicate to the nation 5 major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. We have more from a correspondent.
5: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of ₹640 crore, spread over 23,800 square meters. The modern terminal is designed to handle 35 lakh passengers annually. Prime Minister will also dedicate to the nation the 298 kilometer long Nyamo Padum Darcha Road constructed by Border Roads Organization, connecting Nyamo in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. As part of effort to strengthen energy security and harness Ladakh's renewable energy potential, Prime Minister will inaugurate the 9-megawatt Hanu small hydroelectric project and 66 kV double circuit Da Hanu Khalsa transmission line. Prime Minister will inaugurate India's first petroglyph conservation park at Sindhu Ghat, Leh. Ladakh is home to hundreds of prehistoric rock art sites. For Akashwani News, this is Punsuk Wangmo from Leh, Ladakh.
4: Prime Minister Narendra Modi will interact with the Indian contingent that participated in the Asian Games 2026 in New Delhi this evening. The Prime Minister will also address a gathering on the occasion.
6: India finished 4th in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals including 21 gold, 27 silver and 37 bronze. This marked India's second consecutive finish among the top 5 nations at the Asian Games, reflecting the country's growing competitiveness across a diverse range of sporting disciplines. India also recorded several notable achievements at the Games, including historic performances in recurve archery, gold medals for both the men's and women's hockey teams in the same edition, and maiden medals in soft tennis and mixed martial arts. Other significant achievements include

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई, 8:40 और आपका अपना चैनल 107.1 MHz पर यानी FM रेनबो और थर्सडे की ब्राइट मॉर्निंग 15 अक्टूबर 2026 और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरी सोना, तू क्या चाहता है? आखिर तेरे दिल में क्या है? जो तुझे चाहिए वही मिलेगा। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ, इसी स्पिरिट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, यानी जिंदगी में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें, खुशहाल रहें। सो पहला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, और गीत सुनकर आपको कुछ जज करने की कोशिश भी करनी है कि ये गीत मैंने आज सुबह सुबह क्यों प्ले किया है। आप जानते हैं कि मेरा अंदाज क्या है, मेरा स्टाइल क्या है। तो चलिए लता जी की आवाज़ और आपके दिल को थोड़ा सा बेकरार कर देते हैं।

0: ऑस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
3: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

जी हाँ दोस्तों, एक बेवफा से प्यार किया, लता जी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत को सुनकर, यानी जो दो तीन गाने मैंने आपको सुनवाए, हम एक गोल्डन एरा में चले जाते हैं, एक ऐसे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं जहाँ संगीत का एक अलग मैजिक था, एक अलग मुकाम था। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, 8:55 हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज थर्सडे मॉर्निंग में हम बात करते हैं कि आज का सितारा कौन होगा, यानी मस्त मुंबई में आज का सितारा कौन होगा। और ये संगीत हमारी हिंदी फिल्मों की जान है, और आज एक महान संगीतकार की बर्थ एनिवर्सरी है। अगर आप उनका नाम जान गए हैं, आपको थोड़ा सा भी कुछ आइडिया हो गया, तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं कि इस संगीतकार का, यानी जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, जिनके गाने मैंने आपको सुनवाए हैं, उनका पूरा नाम क्या है। जी हाँ, आपको बताना है, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा, उनका पूरा नाम क्या है। तो व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी से जल्दी मेरे सवाल का सही जवाब भेजें, और जिनके जवाब सही होंगे उन सभी लिसनर्स का नाम मैं ऑन एयर लूँगा। और आज इन्हीं की चर्चा करेंगे, और इन्हीं की फिल्मों के प्यारे प्यारे गाने मैं आपको सुनवाऊँगा। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ, मुंबई सिटी तू प्यार का सागर है, बहुत ही खूबसूरत प्रार्थना है। और फिल्म में ये प्रार्थना भगवान के लिए यानी ऊपर वाले के लिए की गई है, उसे याद किया गया है, उससे शक्ति मांगी गई है, आशीर्वाद मांगा गया है कि हम हमेशा आपसे जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। तो मुंबई सिटी 9:08:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। और इतने सारे खूबसूरत गानों को सुनकर हमारे लिसनर्स को अंदाज़ा हो गया है कि आज किस हस्ती की बात मैं करने वाला हूँ।

यानी 9:07 से पहले हमारे जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं ऑनर लेने वाला हूं। तो आज की हस्ती है शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी। जी हाँ, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन दोनों ने कितना शानदार काम किया है। 1949 में मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक राज कपूर साहब ने बरसात फिल्म में इन्हें संगीत देने का मौका दिया था। ये उनकी पहली फिल्म थी। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शंकर पृथ्वी थिएटर में पहले से कई तरह के काम कर रहे थे, जैसे पृथ्वी थिएटर में नाटकों में छोटी छोटी भूमिकाएँ करना। यहीं पर उन्होंने दोस्तों सितार पियानो जैसे वाद्य यंत्र बजाने सीखे। इस तरह यहीं से शंकर की, जी हाँ, शंकर सिंह रघुवंशी की संगीत की यात्रा शुरू हुई। आज शंकर जी की बर्थ एनिवर्सरी है तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और शंकर जयकिशन संगीतकार की जोड़ी थी जिन्होंने साथ में काम किया और बहुत ही कमाल के गाने बनाए, और उनके गाने, उनका संगीत हमारे पास एक बेशकीमती खजाना है। तो शंकर सिंह रघुवंशी को हम इस कार्यक्रम में उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कोटि कोटि नमन करते हैं, और आज उन्हीं के गाने मैं आपको सुनवा रहा हूँ। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़, बस रूठना मत। जी हाँ,

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: अरे या E20 ला घेऊन काय कन्फ्युजन आहे?
3: मला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, तज्ञांनी टेस्ट केल्यावर कोणत्याही इंजिनची झीज आढळली नाही। E20 मुळे इंजिन नॉकिंग कमी होतं आणि हाय ऑक्टेन मुळे पिकअपही अमेझिंग मिळतो।
2: मग तर नो कन्फ्युजन, ओनली कॉन्फिडन्स।
3: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो कार्यक्रम मस्त मुंबई, और बात कर रहे हैं शंकर जयकिशन की और इस जोड़ी के शंकर सिंह रघुवंशी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम उन्हें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कोटि कोटि नमन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, बरसात फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और ये उनकी पहली फिल्म थी, यानी राज कपूर साहब के साथ उन्हें पहला मौका मिला, और राज कपूर जैसी हस्ती के साथ पहला मौका मिलना अपने आप में बहुत बहुत मायने रखता है। और इस फिल्म के संगीत से शंकर जयकिशन की जोड़ी एक बहुत बड़ी स्टार बन गई। 1951 में दूसरी फिल्म आई आवारा, उसके गाने भी मैंने आपको सुनवाए, और आवारा फिल्म के बाद एक टीम बन गई और इस टीम में थे राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र और मुकेश, साथ में लता जी, और इन लोगों ने गीत संगीत की दुनिया में इतना कमाल का काम किया, इतने खूबसूरत गाने बनाए कि आज कह सकते हैं कि लगभग 75-76 साल के बाद भी, यानी करीब 70-80 साल के बाद भी ये गाने लोगों के दिलों को छू रहे हैं, लुभा रहे हैं। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़।

जी हाँ दोस्तों, 9:25 और 25 सेकंड और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और प्यारे प्यारे गाने और शंकर जयकिशन का कमाल का संगीत। और आज के हमारे सितारे हैं शंकर सिंह रघुवंशी। इनका पूरा नाम है शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी। तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1922 को हैदराबाद में। और बचपन से ही शंकर को दो चीज़ों का बहुत शौक था। हम सभी को बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें भाती हैं और कुछ ना कुछ शौक सभी के रहते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि शंकर सिंह को किन चीज़ों का शौक था, यानी दो कंट्रास्ट, पूरा वेरिएशन लाइफ में। उनका पहला शौक था कुश्ती करना, जी हाँ, अखाड़े में जाना, कुश्ती करना, कुश्ती के दांव पेच सीखना। और दूसरा शौक था तबला बजाना। जी हाँ, देखिए कितना इसमें कंट्रास्ट है, कहाँ कुश्ती करना, कहाँ तबला बजाना। कुश्ती की वजह से उनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रही, उनकी कदकाठी काफ़ी अच्छी रही। और जहाँ तक तबले की बात है, तो वो अपने घर के पास एक शिव मंदिर था, वहाँ पर जब भी कीर्तन होता था, सत्संग होता था, तो वो तबला बजाया करते थे। और मुझे लगता है कि भगवान ने उनकी जो ये तबला बजाने की कला थी, उसको बहुत सीरियस ले लिया और भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें मुंबई भेज दिया। और मुंबई आकर उन्हें पृथ्वीराज कपूर साहब का जो थिएटर था, यानी पृथ्वी थिएटर, वहाँ पर उन्हें तबला बजाने की नौकरी मिल गई। लेकिन मुंबई में भी उनका कुश्ती का शौक बरकरार रहा और समय निकाल कर वो यहाँ भी अखाड़े में उतरते थे और कुश्ती का अभ्यास करते रहते थे। और वो जो तबला बजाने की नौकरी कर रहे थे, इसके लिए उन्हें मिलते थे हर महीने 75 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 75 रुपये। सोचिए, 1950 के आसपास का समय था और 75 रुपये। आज 75 रुपये में एक आदमी खाना भी नहीं खा सकता है। समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एनीवे, शंकर साहब की यहाँ पर दोस्ती हुई, यानी मुंबई में घूमते घूमते उन्हें एक दिन जयकिशन टकरा गए। और जयकिशन को भी काम की तलाश थी और जयकिशन को हारमोनियम बजाना आता था और पृथ्वी थिएटर में एक हारमोनियम बजाने वाले की जगह खाली थी। और शंकर जयकिशन को पृथ्वी थिएटर ले आए और उन्हें हारमोनियम बजाने की नौकरी दिलवा दी। इस तरह शंकर और जयकिशन के बीच में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती समय के साथ बढ़ती रही और बाद में दोस्ती एक संगीतकार की जोड़ी बनकर दुनिया के सामने आई। और ऐसी सामने आई कि आज भी वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं। इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे दिलों में आज भी दोनों बसे हुए हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, मन्ना डे साहब की आवाज़।

0: गावात दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं. देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे.
1: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय.
0: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती. अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा.
2: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित.
3: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम.
4: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से.
3: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन.
4: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक.
3: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए.
4: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम. ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें.
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक. जीवन करें समृद्ध.
5: जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं FM रेनबो यानी 107.1 MHz पर. अगला गीत बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लता जी की आवाज़.

जी हाँ, मुंबई सिटी 9:41 और 11 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आज के सितारे हैं शंकर जयकिशन और आज हम शंकर सिंह रघुवंशी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, ऐसे लोग, ऐसे कलाकार यानी शंकर जैसे, जयकिशन जैसे हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहते हैं, बरकरार रहते हैं अपने काम की वजह से। जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वो हमेशा, मुझे लगता है कि जब तक संगीत रहेगा इस जोड़ी का नाम रहेगा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शंकर जयकिशन ने एक संगीतकार के तौर पर 1949 से लेकर लगभग 1971 तक साथ में काम किया, लेकिन 1971 में सिर्फ। जी हाँ, मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को भगवान भी अपने पास बुलाना चाहते हैं। 1971 में सिर्फ 41 साल की उम्र में जयकिशन का निधन हो गया और शंकर सिंह अकेले रह गए। लेकिन इसके बाद भी शंकर सिंह अकेले ही फिल्मों में संगीत देते रहे और संगीतकार के तौर पर उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने हमेशा नाम इस्तेमाल किया शंकर जयकिशन। यानी जयकिशन के दुनिया से जाने के बाद भी शंकर और जयकिशन की दोस्ती हमेशा हमेशा बरकरार रही। ऐसा होता है संगीत का जादू, ऐसा होता है गीतों का मतलब। और अप्रैल 1987 में 64 साल की उम्र में शंकर सिंह रघुवंशी भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गीत संगीत का एक अनमोल खजाना, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, इस दुनिया के लिए। तो चलिए, अगला गीत पेश करने से पहले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद सुनेंगे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, 10 और 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।

जी हाँ दोस्तों, भूले से भी ना करना कोई प्यार। बहुत ही खूबसूरत गीत, लता जी की आवाज़ और शंकर जयकिशन और लता जी का जो कम्बिनेशन है, जो उसका मैजिक है दोस्तों, वो लाजवाब है। तो चलिए, चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे किन लिसनर्स ने मैंने सवाल पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि आज हम किस हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, किसकी चर्चा करेंगे। और मेरा सवाल था कि उस हस्ती का आपको पूरा नाम बताना है, सही नाम बताना है। तो जिन लिसनर्स ने सही नाम बताया उनके नाम मैं ऑन एयर ले रहा हूँ। जी हाँ, ग्रांट रोड से फिरोज सिंगनपुरिया जी, हमेशा की तरह आप सही रहे। और आर.एन. सोनी साहब जयपुर से, पंकज माहौड़ अमरावती से, दिगंबर काले कुरला

इससे, और राकेश माथुर जी पुणे से हमेशा की तरह सही रहे, तनुजा शर्मा अंधेरी से, लाली झा अजमेर से, सुंदरी ठाकुर उज्जैन से, संयोगिता चौहान भी इंदौर से, और हेमंत भालेकर जी मालाबार हिल से, दिलेश वंजारी भंडारा से, दीपा पालकर जी माहिम से हमेशा की तरह सही रही, और चेतन कुमार गया बिहार से। हमारे इन लिसनर्स के जवाब एकदम सही थे। जी हाँ, शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी उनका पूरा नाम था और शंकर जयकिशन की जोड़ी थी और इस नाम से उन्होंने संगीत दिया। तो चलिए, जाने से पहले चलते चलते इस कार्यक्रम का यानी स्लॉट का आखिरी गीत मैं आपकी नज़र करता हूँ और मिलेंगे ठीक 10:03 पर कार्यक्रम नमस्ते भारत में, और शंकर जयकिशन के संगीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो चलिए, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, गौर से सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम मस्त मुंबई खत्म होता है। कुछ ही पलों में सुनेंगे आप समाचार। सुनते रहिए

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: वेलकम बैक मुंबई। 10:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं FM रेनबो। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस PLB को मंजूरी दे दी है। इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेल कर्मी भी शामिल हैं। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू कल देर रात 300 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ मुंबई पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और भारत कनाडा व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते पर चर्चा की। अंत में क्रिकेट। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। श्रृंखला का अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।

तो गीत संगीत के दीवानों एफएम के चाहने वालों वेलकम बैक। 10:02 और 46 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल 107.1 MHz पर एफएम रेनबो। कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत और आज का हमारा टाइटल है कहानियां सुनाती हैं। तो एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिनके नाम का हमेशा डंका बजता रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आज मैं किस महान हस्ती के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो इतने लोकप्रिय रहे दोस्तों कि पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है और आज खास दिन भी है। तो अगर आप जानते हैं कि किस हस्ती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो व्हाट्सएप के ज़रिए उनका नाम हमें बता सकते हैं। और गीत संगीत का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, यानी शंकर जंक्शन के संगीत बद गीत उनके गाने में आपको 11 बजे तक सुनाता रहूँगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं और व्हाट्सएप पर आपके संदेशों का मुझे इंतज़ार है। दिल की बात दिल से सुनी जाती है, तो गौर से सुनिएगा।

0: सीसीपीएनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
2: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
1: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
2: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
1: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
2: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
3: ज्या इंधनावर 15 ते 20 वर्ष संशोधन झालंय, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री, ARAI, SIMA, BIS सारख्या संस्थांनी तिला परखून घेतलंय, नीती आयोगाने स्वतः तिची अंमलबजावणीचं धोरण तयार केलंय,
4: तर मग ती विश्वासार्हच असणार ना?
3: अगदी बरोबर, E20 तसंच वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रमाणित आणि सुरक्षित इंधन आहे। भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:26 और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत, और जैसा कि मैंने कहा था कि आज एक बहुत बड़ी हस्ती की हम चर्चा करने वाले हैं, जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिनके नाम को सब बहुत ही सम्मान के साथ, प्रेम के साथ लेते हैं। दोस्तों, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। ये कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते ही हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व

जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है, जिनके नाम को सब बहुत ही सम्मान के साथ, प्रेम के साथ लेते हैं। दोस्तों, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है और इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम साहब। ये कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितनी बड़ी शख्सियत है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। अब्दुल कलाम साहब का नाम लेते ही हर हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपकी पसंद की कोई भी कार लीजिए, कॉस्मोस कार लोन तो है ही। कार लोन 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% से, टेन्योर 7 साल तक, नियम व शर्तें लागू, 0 प्रोसेसिंग फी। सफर सुहाने साथ कॉस्मोस कार लोन के। आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।
2: अरे या E20 ला घेऊन काय कन्फ्युजन आहे?
3: मला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, तज्ञांनी टेस्ट केल्यावर कोणत्याही इंजिन ची झीज आढळली नाही। E20 मुळे इंजिन नॉकिंग कमी होतं आणि हाय ऑक्टेन मुळे पिकअपही अमेझिंग मिळतो।
2: मग तर नो कन्फ्युजन, ओनली कॉन्फिडन्स।
3: भारत सरकारचा उपक्रम, तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:37 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे थे माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में। और हमारे कुछ लिसनर्स ने एकदम सही जवाब दिया। पुणे से राकेश माथुर जी का जवाब एकदम सही है। और जैसा कि राकेश जी आपने लिखा कि आज वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी है, जो कलाम साहब की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और दूसरे हमारे लिसनर हैं देवेन सोनावने, और इन्होंने ठाणे से सही जवाब भेजा है। अजय साखरे हिंदुस्तान के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर से हैं, और आपका जवाब भी एकदम सही है सर। और अंधेरी से तनुजा शर्मा का जवाब एकदम सही है। अजमेर से लाली झा का जवाब भी एकदम सही है। तो इन लिसनर्स ने एकदम सही आंसर्स दिए और बात कर रहे हैं कलाम साहब के बारे में। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में करते हैं और फिर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था, और उनका जन्म एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया था, लेकिन बचपन में वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, यानी अच्छे नहीं थे, उनके मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनती विद्यार्थी थे और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वो भारतीय युवा सेवा में फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पाए। वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। शायद कुदरत उनसे, नेचर उनसे कोई बहुत बड़ा काम करवाना चाहती थी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। और बाद में वो भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, और उन्होंने एक वैज्ञानिक के तौर पर 40 साल तक काम किया। भारतीय सेना के लिए मिसाइल्स बनाई, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें जाना गया। भारत के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में भी उन्होंने बहुत ही खास भूमिका निभाई थी। वाकई कलाम साहब ये देश और हर हिंदुस्तानी हमेशा आपका कर्जदार रहेगा। आपका ऋण हम कभी उतार नहीं पाएंगे। आपने इस देश के लिए इतना किया है कि शायद एक जन्म में इतना करना असंभव है। तो चलिए अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा, मोहब्बत से सुनिएगा।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

जी हाँ, मुंबई सिटी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत और बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट एक महान हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने जुलाई 2002 से लेकर जुलाई 2007 तक। जी हाँ, एक राष्ट्रपति के तौर पर वो बहुत ही लोकप्रिय रहे, बहुत ही पॉपुलर रहे, इसलिए उन्हें भारत के लोगों का राष्ट्रपति भी कहा गया। वो 5 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। जुलाई 2007 के बाद वो फिर से शिक्षा, लेखन और सोशल सर्विस के फील्ड में आ गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही हमेशा की तरह शानदार काम किया। कलाम साहब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उन्होंने अवार्ड जीते, सम्मान हासिल किया। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया, जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। कलाम साहब दोस्तों एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे, बहुत उम्दा इंसान भी थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिनसे उनकी सोच के बारे में पता चलता है, उनकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। उनकी मशहूर किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, इंस्पायरिंग थाट्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, द फैमिली एंड द नेशन, माई इंडिया। इन किताबों को पूरी दुनिया में पढ़ा गया, समझा गया और इसके लिए कलाम साहब को बहुत सम्मान मिला, बहुत प्रेम मिला। तो सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मोहब्बत के साथ सुनिएगा।

जी हाँ दोस्तों, हमारे एक और लिसनर हैं प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे मानखुर्द से। आप दोनों का जवाब भी बिल्कुल सही था और मैं आपका नाम मिस कर गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 10:53 और 26 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम साहब को और उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो चलते चलते एक बार फिर से उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए FM रेनबो। और जाते जाते दो गाने बैक टू बैक मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। मैं हूं आरजे स्वेच्छा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं। इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा में पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर आयोजित किया

जा रहा है। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने सूखा प्रभावित तालुकों में फसल नुकसान का तत्काल आकलन करने के निर्देश जारी किए हैं, जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने बताया कि आकलन के दौरान तस्वीरों और जीपीएस के जरिए फसलों की स्थिति दर्ज की जाएगी और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की जाएगी। देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। धन्यवाद।

हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ आरजे स्वेच्छा और आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। समय हो रहा है ठीक 11:08 और ये समय है हमारे ब्रेक फ्री प्रोग्राम का। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में और बात करना चाहूँगी एक ऐसे बात करना चाहूँगी त्योहारों के बारे में। मतलब कि आज अब धीरे धीरे त्योहारों की फीलिंग आने लगी है और हमको हर तरफ वैसा माहौल दिखने लगा है। हर तरफ लाइट्स हैं, साउंड्स हैं, कलरफुल कपड़े हैं। तो आज गाने तो सुनेंगे ही हम, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जब मैं मुंबई में त्यौहार आना मतलब ना कैलेंडर से पहले ना लोकल ट्रेन से पता चल जाता है। मैं आज आ रही थी तो पूरे स्टेशन पे मुझे रंग बिरंगे कपड़ों में लोग दिख रहे थे और अभी तक ना लोकल में जैसे सुबह सुबह सबके चेहरे पर नींद या हाथों में मोबाइल दिखाई देते थे, मोबाइल तो अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचानक ना भाई लोकल में रंग भरने लगे। इतने सारे लोग रंग बिरंगे कपड़ों में, आज किसी ने पीला पहना है, कई लोगों ने हरा पहना है, कल कुछ और पहनेंगे, कई लोग पूरे अपना ना यू साड़ी चूड़ी पूरे अटायर में, लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही थी और पूरी तरह त्यौहार वाले मूड में नजर आई। मुंबई की लोकल में ना नवरात्रि के दौरान रंगों के साथ एकदम ऐसा कलरफुल माहौल देखने को मिला, साथ ही साथ यही एक बहुत जहाँ पे लोग एकदम बिजी तो रहते हैं अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में, लेकिन उसी के साथ साथ सफ़र करते हुए भी आप ये सब जब देखते हैं तो आपको त्यौहार और करीब से महसूस होते हैं। तो इसी त्योहारों के नाम आज का दूसरा गीत और ऐसे ही हंसते रहिए खुश रहिए और सुनते हैं अगला गाना।

0: बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
6: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
7: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
6: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
7: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
6: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
7: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन करें समृद्ध।

0: जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जावेद अली की आवाज़ में। वैसे जब बात त्योहारों की चल ही रही है तो कई बार हम बाहर जरा सोचिए, मुंबई में रहने वाले कितने लोग ऐसे हैं या किसी और भी शहर में जो अलग अलग दूसरे शहरों से आए हैं, तो कई बार जब त्यौहार नज़दीक आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि घर जाना चाहिए। कई लोग जाते हैं बट कई लोग मजबूरी में कभी कभी नहीं जा पाते, तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि इस शहर ने इस शहर में लोग काम कर रहे हैं इस शहर, लेकिन जब त्यौहार होता है तो अपने घर की याद आती है। किसी की जब यहाँ लोग आते हैं तो लोगों की आँखों में ना नौकरी का सपना होता है, किसी के मन में अभिनय करने की इच्छा होती है, किसी को पढ़ाई करनी थी, तो कोई अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी का एक सपना सोच के आया था। शुरुआत में ना ये शहर थोड़ा अजनबी लगता है, रास्ते याद नहीं रहते, लोकल के प्लेटफॉर्म समझ नहीं आते, और कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता कि इतनी तेज़ भागती दुनिया में अपने लिए जगह कैसे बनाएं। लेकिन धीरे धीरे यही शहर आपकी आदत बन जाता है। जिस स्टेशन पर पहली बार उतरकर आप रास्ता ढूंढ रहे थे, कुछ समय बाद वही किसी दोस्त का इंतज़ार करने लगते हैं। जिस गली में कभी खो गए थे वही आपकी पसंदीदा चाय की दुकान बन जाती है, और एक दिन महसूस होता है कि घर सिर्फ वो जगह नहीं जहां आप जन्म लेते हैं, घर वो जगह भी हो सकता है जहां आपने अपने लिए और अपनों के लिए कुछ सपने देखे और उनको थोड़ा थोड़ा करके सच करना सीखा। तो त्योहारों की खुशी में खुश रहते हैं और अपने लोगों से आप जुड़े रहिए, अपने लोगों से बात कीजिए। जो अपने घर में है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग घर से थोड़ा दूर है उनके लिए भी ये शहर अपना ही है। तो इसी बात पर सुनते हैं अगला गाना, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: करो या इन्वेस्टिंग चा धड़ा

0: इन्व्हेस्टर जागरूकता उपक्रम. अधिक माहितीसाठी सेबी इन्व्हेस्टर वेबसाइट वर विजिट करा किंवा सेबी सारथी ऍप डाउनलोड करा.
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20. भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी.
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित. भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी.
1: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है.
2: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है.
3: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है.
4: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग. योर पेट्रोल व्हीकल इज 100%.
5: शुरू करो या इन्वेस्टिंग का धड़ा.

0: किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: ACP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम,
6: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
5: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
6: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
5: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
6: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम, ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
5: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।

त्योहारों की बात करते हुए और गाने सुनते हुए समय का पता ही नहीं चला. समय हो रहा है 11:53 और ब्रेक फ्री लगभग अपने अंतिम मोड़ पे है. जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, कभी कभी जब बात त्योहारों की चल रही है तो त्योहारों की बात में तैयारियां भी हैं, तैयारियां पहले करनी पड़ती हैं. तो कभी कभी ना ये तैयारियां भी अपने आप में बहुत खुशी देती हैं, मतलब कि अरे वाह त्यौहार आने वाला है, उसकी अलग ही एक्साइटमेंट होती है ना. चाहे घर के काम हो, चाहे कपड़े चुनने हो, या लोगों से अपने बारे में, अपने दोस्त से कोई सलाह लेना हो, या अपने पुरानी कोई चूड़ियाँ सामान निकालना हो. और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि त्यौहार मनाने के लिए आपको हर दिन कहीं बाहर जाने की या महंगे कपड़े खरीदने की ज़रूरत है. त्यौहार का आनंद आपकी सुविधा के हिसाब से भी हो सकता है. घर पर एक दिया जलाना, कोई अच्छा गाना सुनना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना. मुझे लगता है त्यौहार हमें एक छोटी सी बात सिखाता है, जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने लिए खुशी के पल बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है. और क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अगले लक्ष्य तक नहीं पहुंचने का नाम है, रास्ते में जो छोटे छोटे खूबसूरत पल मिल रहे हैं उन्हें हमें महसूस करना उतना ही ज़रूरी है. तो इस त्योहारों के मौसम में खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए, बस इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, जितना हो सके उतना मन से खुश रहिए, त्यौहार मनाइए, अपनों के साथ समय बिताइए. क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा करके, महंगा करके ही आपका त्यौहार मनेगा. सिर्फ दिल से खुशी ही बहुत ज़रूरी है. अपनों का साथ हो तो सारे त्यौहार अच्छे हो जाते हैं. तो अब मैं ब्रेक फ्री का जो है वो ब्रेक फ्री अपने अंतिम चरण पर है. ब्रेक फ्री से मैं ब्रेक फ्री को समेटती हूँ और इसी के साथ हम नेक्स्ट म्यूज़िक कैफ़े में मिलेंगे. तो आपको छोड़ के जा रही हूँ मैं आखिरी गाने के साथ. आप सभी को नवरात्रि की और आने वाले सारे त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ. इसी के साथ आखिरी गाना और फिर उसके बाद हम मिलेंगे म्यूज़िक कैफ़े में. आप बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर.

नमस्कार। इस घंटे के मुख्य समाचार। देश में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री सितंबर में सालाना आधार पर 21.8% बढ़कर 4,54,574 इकाई हो गई। उद्योग संगठन सियाम ने यह जानकारी दी। सितंबर 2025 में थोक बिक्री 3,73,347 इकाई रही थी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान रखते हुए चुनिंदा व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर को दिवाली के तुरंत बाद लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले एनपीसीआई ने यह दर आज से लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब नई दर दिवाली के बाद लागू की जाएगी। मुंबई पुलिस ने आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में बॉलीवुड अभिनेता एवं अमेरिकी नागरिक इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में उनके भाग लेने के बाद की गई है, जहां प्रदर्शनकारी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं।

थे कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी करीब 53,000 करोड़ रुपए में खरीदने के सौदे की घोषणा के बाद आज बैंक के शेयर में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। धन्यवाद।

और फिर से आपका स्वागत करती हूँ म्यूज़िक कैफ़े में। समय हो रहा है 12:11 और ये समय है म्यूज़िक कैफ़े प्रोग्राम का। आप सोच रहे होंगे एकदम त्योहारों से सीधे हम पुराने गानों पे कैसे पहुँच गए, रेट्रोस पे कैसे पहुँच गए। तो आज ना मैं कुछ ऐसे ही गाने आपको सुनाने वाली हूँ जिनकी जो जो मूवीज़ हैं, जो किताबों से उठाकर उनको पर्दों पे दर्शाया गया है। मतलब कहानी पहले किताब के पन्नों पर जन्म ली थी कहानियों ने, लेकिन और फिर उसके बाद बड़े पर्दे पर आकर लाखों लोगों के दिल में बस गई थी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही फिल्मों की जिनकी कहानियों की जड़ें किताबों में छुपी हैं, जो किताबें लोगों ने लिखी उनको बड़े पर्दे पे लोगों ने दर्शाया। तो शुरुआत हमने की थी गाइड फिल्म से, जो कि 1965 की फिल्म, और इसको लिखा था आर के नारायण जी ने। उनका इंग्लिश यानी अंग्रेजी उपन्यास नॉवल था द गाइड पर, इस पर यह फिल्म आधारित थी, जिसमें देवानंद राजू गाइड बने थे और वहीदा रहमान ने निभाया था रोजी का किरदार। लेकिन इस फिल्म की खास बात सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, राजू की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक आम इंसान को लोग आध्यात्मिक गुरु मानने लगते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब और फिल्म का अंत एक जैसा नहीं है, यानी एक ही कहानी, लेकिन किताब और सिनेमा का नज़रिया अलग अलग। तो चलिए, इसके बाद हमने गाइड से शुरुआत कर दी है, इसके बाद हम अगली फिल्म की बात करते हैं और उसकी कहानी जो है, जहां मोहब्बत के साथ साथ शायरी और नवाबी तहजीब भी है। तो मैं बात कर रही हूँ उमराव जान की। ये फिल्म मिर्ज़ा हादी रुसवा की उर्दू उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित है। कहानी है अमीरन की, जिसे बचपन में उसके परिवार से अलग कर दिया गया है और आगे चलकर वह उमराव जान के नाम से मशहूर होती है। इस फिल्म का एक खूबसूरत पहलू भी है, इसकी शायरी और इसका संगीत, गज़लों के ज़रिए किरदारों की भावनाएं सामने आई हैं और रेखा जी की अदाकारी। और इस मूवी को एक बार और बनाया गया है, दो बार बनाया गया, एक बार रेखा जी ने इसमें अदाकारी की है और एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने। तो वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का यादगार पहचान बन गई है। तो इस फिल्म से हम अगला गाना सुनते हैं, उसके बाद हम और फिल्मों की बात करेंगे जो कि उपन्यासों पर आधारित हैं। और आप भी कुछ ऐसी फिल्में जानते हैं तो मुझे उसके नाम ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 पर। और सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ 107.1 FM रेनबो पर, और सुनिए अगला गाना उमराव जान से।

0: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम।
1: टेन्योर, इंटरेस्ट रेट और ब्याज के ऑप्शंस चुनिए अपनी जरूरत के हिसाब से।
0: मंथली ब्याज के लिए 445 दिन, क्वार्टरली के लिए 446 दिन और कॉम्युलेटिव ब्याज के लिए 447 दिन।
1: डिपॉजिट टेन्योर के हिसाब से ब्याज दर 7.5% से लेकर 7.30% तक।
0: स्कीम सिर्फ सीमित समय के लिए।
1: कॉस्मो आनंदोत्सव डिपॉजिट स्कीम। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही अपनी नजदीकी ब्रांच से संपर्क करें।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
2: भावात दररोज 6 ते 7 कोटी वाहनात इंधन भरलं जातं। देशात 23 कोटीहून अधिक गाड्या 2.5 वर्षांपासून E20 वर चालत आहे।
3: सगळं तर एकदम व्यवस्थित चाललंय।
2: तेच तर, काही समस्या असती तर आतापर्यंत समोर आली असती। अफवांवर नाही, तथ्यांवर विश्वास ठेवा।
4: भारत सरकारचा उपक्रम तेल विपणन कंपन्यांद्वारे जनहितार्थ प्रसारित।
5: हर किसी को चाहिए अपने सपनों का घर और हर किसी को चाहिए किफायती ब्याज दर। कॉस्मोस होम लोन, ब्याज दर 7.80% से शुरू, 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध, टेन्योर 25 साल तक और 0 प्रोसेसिंग फी। नियम व शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करें समृद्ध।
6: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
7: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।

0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।

बात हम कर रहे थे उन फिल्मों की जो उपन्यासों के ऊपर बनाई गई हैं, जिन्हें इतने खूबसूरत तरीके से लोगों ने लिखा और उसके बाद उनके ऊपर फिल्में बनी थी। तो अभी हम जो गाना सुन रहे थे ये था टू स्टेट मूवी का, जो कि टू स्टेट स्टोरी ऑफ माय मैरिज नाम के उपन्यास से ली गई है। इसमें क्रिश और अनन्या की कहानी है, जो अलग अलग संस्कृति से अलग अलग जगहों से होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने प्यार को पाने के लिए जो भी करते हैं अपने परिवार को मनाते हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। चेतन भगत जी का ये उपन्यास है। और इसके बाद हमारा 12:30 बजे से उमंग कार्यक्रम शुरू होगा, उसके पहले मैं आपको एक और गाना सुनाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है देवदात देवदास का, शरद चंद चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ ये उपन्यास। प्यार दुख हमारे गलत और देर से लिए गए फैसलों, इन सब को दिखाता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो इस पिक्चर का ये गाना हम सुनते हैं और इसी के साथ म्यूज़िक कैफे से मैं विदा लेती हूँ और अब हम मिलेंगे हिट एंड हॉट में। आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे 8657661071 पर और सुनते रहिए FM रेनबो।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं, उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू,

लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो, टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। वॉट ए कोइंसिडेंस इट इज दैट आई रेड दिस पोएम इन माई चाइल्डहुड इन द टेक्स्ट बुक एंड गॉट इट लिसन टू इट इन अ म्यूजिकल फॉर्म। आई लाइक दिस पोएम एंड सॉन्ग वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट, यानी MB। यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है, यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन यह हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं।
आपको पता होना चाहिए उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने

0: स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB. आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं, उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे USB फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में CD और DVD के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डोब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक CD के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।

0: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
1: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
0: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
2: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
0: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
0: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे। अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
0: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
0: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
8: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
9: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
10: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
11: बिल्कुल ठीक है।
10: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
12: वीर जोरावर की
13: जय!
12: वीर जोरावर की
13: जय!
12: जय जेरापुर, जय भारत!
13: जय जेरापुर, जय भारत!
9: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा,

0: जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह,
6: आइए हमारे दोस्त। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
6: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
6: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
6: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
6: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
6: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
7: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
7: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
7: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
7: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: John Allen!
1: What how?
0: तुम चारों तरफ से घिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: हाँ। छोड़ो मुझे। हाथ मत लगाओ मुझे। मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारा जंग। मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: हे चलो इसको,
1: चलो मुझे, चलो छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
6: वाय,
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: Actually, you are a fool.
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर

0: जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है हिट एंड हॉट में, आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसमें आप अपने मनपसंद गाने भेजते हो। और हमने शुरुआत की है इस गाने के साथ जो लता मंगेशकर जी ने गाया, बेहद खूबसूरत गाना। मैं आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ और आप सबकी रिक्वेस्ट भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। यश शिंदे जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो है वो लिखा है, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी। ज़िंदगी जीने का मकसद ख़ास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का एक अंदाज होना चाहिए। कल की फिक्र में आज का सुकून ना खोना, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, बस इसे हंसते हुए जीना। दौड़ते भागते दुनिया में दो पल रुकना भी सीखो, खुद से मिलना और जिंदगी को जी भर के जीना सीखो। बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी है और इसी बात के साथ मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है जो कि मैं नेक्स्ट प्ले करने वाली हूँ, जो पंकज महोट जी ने भी बोला है और यश शिंदे जी की बात से भी बिल्कुल मैच करेगा। और ये गाना सुनते हैं, उसके साथ ही साथ हम इसके बाद सुनेंगे दीपा पालकर जी का गाना उड़ी उड़ी जाए। त्योहारों में चार चांद लगा दिए इस गाने ने, तो हम उनकी फरमाइश का ये गाना सुनेंगे। और उसके बाद हम सुनेंगे राकेश माथुर जी का तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। तो चलिए सुनते हैं बैक टू बैक गाने, इन गानों के बाद मैं आगे की फरमाइशें पूरी करूंगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आज स्वेच्छा।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: म्यूजिकली योर्स 1:40 का समय हो रहा है और आपकी फरमाइशें हैं जो रुक नहीं रही है। अभी मैंने जो न्यूज़ के पहले गाना प्ले किया था, हर दिल जो प्यार करेगा, वो हितेंद्र दास जी ने फरमाइश की थी। और अब मैं अगला गाना पेश कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, मेरा नाम गौरव कुकाड़ी है, मैं आपके FM का नया श्रोता हूँ। मैं अपनी खूबसूरत और प्यारी पत्नी मोनाली कुकाड़ी के लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। गाना है विवाह मूवी का, दो अनजाने अजनबी। पहली बात तो वो हमारे नए श्रोता हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। उसी के साथ बहुत ही खूबसूरत गाना है और उनकी खूबसूरत पत्नी मोनाली कुकाड़ी जी के लिए हम ये गाना ज़रूर प्ले करेंगे। और उसी के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आई है आकाश की, जिन्होंने अपनी प्यारी और खूबसूरत पत्नी सोनम शर्मा के लिए गाना डेडिकेट किया है। गाना है बदलापुर का जीना जीना, और इस गाने को भी हम प्ले करेंगे। आप लोग हमारे नए श्रोता हैं तो हमारा FM रेनबो ज़रूर सुनते रहिए और हमारे साथ बनी रहिए, और हम सुनते हैं ये दोनों फरमाइशें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आज नए श्रोताओं के गाने भी सुन लेते हैं ज़रा।

समय हो रहा है 1:53 और हिट एंड हॉट का कार्यक्रम अब समाप्ति पे है। अभी जो मैंने गाना चलाया था वो अजय साखरे जी ने फरमाइश की थी, सांस में मेरी सांस मिले। मैं उन सभी लोगों के नाम लेना चाहूँगी। लास्ट गाना मैं बजाना चाहूँगी छल का, जो कि विजेंद्र घटोल जी ने बोला की फरमाइश है, तो वो गाना मैं लास्ट बजाऊंगी। उसके साथ ही साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैं सबके नाम लेना चाहूँगी। स्वरण सिंह जी, फिरोज शेखनपुरिया, प्रमोद चिंचोलकर जी और शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, ये सभी झारखंड से, सोनू, रविराज, गुलशन, लकी, सौरभ शर्मा, प्रवीण जी, अभिजीत गवानकर जी, मुकेश कश्यप जी, जगजीत सिंह, जगदीश सिंह जी, राकेश माथुर, दीपा पालकर जी, हरजिंदर सिंह जी, यश शिंदे, यशवंत आडमुड़े, फरमान जी, प्रकाश शिंदे, जूली सिल्वेरा, पंकज मोहर, संदीप कुमार जी, सुबलक्ष्मी मस्तकर, अजय साखरे इंदौर से, हीरामणि वर्मा दिग्दर्शन और कविता, दत्ता केदार जी, मिंटू, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, सुयोग महाजन जी, हितेंद्र दास, राजेंद्र परमार बाबा दादर से, आकांक्षा मनोज सिन्हा, अंजू जी अंधेरी ईस्ट से, दीपाली शिरोडकर, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपको बस आखिरी गाने के साथ छोड़ के जा रही हूँ। आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो। मैं हूँ आरजे स्वेक्षा, अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक यही यूं ही त्योहारों के रंगों और खुशियों के संग आपको छोड़ के जा रही हूँ, और ये आखिरी गाना सुन के आपको वैसा ही महसूस होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।

0: Meteorological department has forecast heavy to very heavy rainfall expected over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. The Met department also said heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till the 21st of this month. The higher reaches of Doda district in Jammu and Kashmir experienced the season's first snowfall. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservation, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surge to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian wrestler Vishwajit Ramchandra More creates history by clinching silver medal in Greco-Roman finals at Under 23 World Championships in Las Vegas. With that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
1: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि हम 31 तीन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त करेंगे। मुझे आनंद है आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देश भर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
5: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
6: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन इन द वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला

0: स्वदेशी बहुउद्देश्यीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: भारत सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
2: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक

तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म गाइड के इस गीत के साथ, लता मंगेशकर की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
2: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वालों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।